0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने 9 अगस्त को वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिए गए अपने संदेश में कहा, हम जीवन के तूफान में भी यीशु के संग संयुक्त रहें।
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज का सुसमाचार गलीलिया समुद्र में एक आंधी के बीच पानी में चलकर यीशु का अपने शिष्यों के पास आने की चर्चा करता है। रोटियों और मछलियों के चमत्कार उपरांत स्वामी अपने शिष्यों को नाव पर चढ़कर निकलने को कहते हैं, जबकि वे स्वयं पर्वत के ऊपर एकांत में प्रार्थना करने को जाते हैं। तट से दूर एक बार निकलने के बाद शिष्यगण अपने को आंधी में फंसा पाते और आगे बढ़ने में संघर्ष करते हैं। एक सफल अनुभव के उपरांत जहां वे एक चमत्कारी निशानी के नायकों स्वरूप अपने को देखते, अब वे अपने में निसहाय आंधी और तूफान की जोखिम का सामना करने में भयभीत हो जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि रात अपने में खत्म होने को थी, यीशु उनकी ओर लहरों के उफान में पानी पर चलते हुए आते हैं और उन्हें देखकर शिष्य भयभीत हो जाते। वे उन्हें एक प्रेत समझते हैं, लेकिन वे उन्हें कहते हैं, ढाड़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। ईश्वर की उपस्थिति सारी चीजों को बदल देती है। यहाँ तक कि पेत्रुस लहरों में कुछ कदम चलकर उनकी ओर आते हैं, लेकिन लहरों को देखकर वे भयभीत हो जाते और पानी में डूबने लगते हैं, जबकि यीशु हाथ बढ़ाकर उन्हें बचा लेते हैं। इस भांति जब स्वामी नाव में चढ़ते तो आंधी थम जाती है और स्वतः ही विश्वास की एक घोषणा शिष्यों के हृदय से निकल पड़ती है,
2: Davvero tu sei figlio di Dio.
1: सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस बिंदु तक पहुंचने हेतु शिष्यों के लिए एक चमत्कार को देखना काफी नहीं था और ना ही लोगों की निगाहों में अपनी सफलता का एहसास करना, बल्कि उन्हें अपनी कमजोरी का अनुभव करना था और उसके अंदर ईश्वर की उपस्थिति को देखना। केवल यह अनुभूति ही उनकी आंखों और हृदयों को खोलती है जो उनके निकट रहते हैं, जहां वे तूफानों के मध्य भी शांति का अनुभव करते हैं। कुछ समय बाद यीशु उन्हें कहेंगे, यदि तुम में विश्वास होगा और तुम संदेह नहीं करोगे, यदि तुम इस पर्वत से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जाल लग, तो ऐसा ही होगा। शिष्यों के लिए समुद्र में वैसे ही बातों की अनुभूति होती है, ख्रिस्त की शांति की, जो पर्वत में प्रार्थना कर रहे होते, जो समुद्र की लहरों से होते हुए उनके बीच में उपस्थित होते हैं। संत पापा ने कहा कि यह चमत्कार हमारे लिए विशेष बातों की शिक्षा देती है। पहला, हम अपनी सफलता से ना बहकें और ना ही अहंकारी बने, वहीं हम अपने जीवन में निराश ना हों, यहाँ तक कि अंधेरे की स्थितियों में जब हम शक्तिहीन अनुभव करते हुए मुसीबतों का सामना करते हैं, हमारे प्रयासों के बावजूद हमें यह लगता है कि हम आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर जा रहे हैं।
2: In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona.
1: परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु हमारा परित्याग कभी नहीं करते हैं, और यदि हम नम्रता से अपने जीवन रूपी नाव में उनका स्वागत करते हैं, प्रार्थना संस्कारों और उनके वचनों को सुनने के माध्यम से, तो हम उनमें शांति, ज्योति और अपने जीवन यात्रा के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। माता मरियम, जो विश्वास के कारण धन्य मानी गई, हमें ईश्वर में विश्वास करते हुए एक समर्पित जीवन जीने हेतु मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सभी विश्वासी समुदाय के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया।
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा लियो ने सूडान, विशेषकर एल ओब्देई शहर के विकट परिस्थिति के संबंध में अपनी चिंता जताई। उन्होंने देश के लोगों के प्रति अपने आध्यात्मिक सामीप्य प्रकट करते हुए इस बात की अपील की कि देश के नेतागण जन सामान्य लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निवेदन किया कि वे युद्ध की रोकथाम हेतु शीघ्र कदम उठाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे पीड़ित लोगों का सहारा बने, उन व्यक्तियों के हृदयों को परिवर्तित करें जो हिंसा के बीज बोते हैं, और देश में बहुप्रतीक्षित शांति स्थापित करने में मदद मिले। संत पापा ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मारे और घायल हो रहे बच्चों के मिलते खबरों पर दुख व्यक्त की। दुखदायी घटनाएं जारी हैं, वास्तव में उनमें वृद्धि हुई है, जिसमें बहुत से नागरिक मारे जा रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने युद्ध के शिकार घायलों और युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी निकटता के भाव प्रकट किए। इतने कष्ट को देखते हुए मैं मानवीय कानूनों का सम्मान करने और दोनों तरफ से आम लोगों पर हमला बंद करने की हृदय से अपील करता हूँ। युद्ध से सिर्फ युद्ध होती है और इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। उन्होंने कहा कि अब हिंसा के इस दौर को रोकने और शांति का रास्ता बनाने के लिए कूटनीति और वार्ता की जरूरत है। इसके उपरांत संत पापा ने रोम और विभिन्न देशों से आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने मिलान धर्म प्रांत के युवाओं, एन्ना के स्काउट दल और पादुआ धर्म प्रांत के युवाओं का अभिवादन किया। संत पापा ने कई युवा दलों की उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराया, जो प्रशिक्षण और मिलन के कार्यक्रमों में अपनी छुट्टियों को फलप्रद व्यतीत किया है। उन्होंने कहा, यह आशा का संकेत है। संत पापा ने युवाओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इन दिनों धर्म विधि के कैलेंडर हमारे लिए बहुत सारे संतों की सूची प्रदान करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनके बारे में आप और अधिक गहराई से जान सकते हैं। उन्होंने कहा, कल हमने महान संत डोमिनिको की याद की, जो उपदेशक पुरोहितों के संस्थापक हैं। आज हम क्रूस के संत तेरेसा बेर्नाडेट एडिथ एटिने की याद करते हैं, जो ऑस्ट्विट्स में मारे गए कार्मेलाइट और यूरोप के सह संरक्षक संत हैं। कल हम संत लॉरेंस रोम कलिसा के उपयाजक, परसों असीसी की संत क्लारा का त्यौहार मनाएंगे, जिन्होंने अपने साथी नागरिक संत फ्रांसिस के जीवन शैली का अनुसरण करते हुए गरीब और विनम्र यीशु के लिए अपने आरामदायक जीवन का परित्याग कर दिया। संत पापा ने कहा, प्रिय युवाओं, आप अपने को सुसमाचार के इन अनुकरणीय साक्षियों से प्रेरित होने दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए विदा लिए।
2: बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14 में 7 सितंबर को जेना जानो में माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय का दौरा करेंगे और गिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। माता मरियम की छवि के सामने प्रार्थना करते हुए उनकी एक पेंटिंग का निरावरण भी किया जाएगा। रोम से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे छोटे से शहर जेना जानो रोमन साम्राज्य के दौरान यह गर्मियों के समय को बिताने का स्थान था और मध्य युग में एक गांव जो बाद में कोलोना परिवार की जागीर का हिस्सा बन गया। जेना जानो में यह महागिरजाघर माता मरियम नेक सलाहकारिणी का तीर्थालय है, जो असल में कुंवारी मरियम को समर्पित एक छोटा सा गिरजाघर था और 14वीं सदी में अगुस्टीनियन धर्म संघियों को सौंप दिया गया था। संत पापा परमाध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद 10 मई 2025 को माता मरियम का दर्शन करने गए थे। 1 साल से ज्यादा समय बाद वे 7 सितंबर को शाम 6 बजे धन्याकुआरी मरियम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा लियो ने परमाध्यक्ष के रूप में जेना जानो की अपनी पहली यात्रा के दौरान महागिरजाघर के बाहर एकत्रित सभी विश्वासियों से कहा था, मैं नए मिशन के इस पहले दिनों के दौरान यहाँ आना चाहता था जिसे कलीसिया ने मुझे सौंपा है, ताकि पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मिशन को जारी रखा जा सके। तीर्थालय की अतिथि पुस्तिका में उन्होंने लिखा, उन्हें माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय पर आने का कर्तव्य और गहरी इच्छा महसूस हुई। संत पापा ने लिखा, मेरे पूरे जीवन में वे अपनी ममतामयी उपस्थिति, अपनी बुद्धिमता और अपने बेटे के प्रति अपने प्यार के उदाहरण के साथ मेरे साथ रही, जो हमेशा मेरे विश्वास के केंद्र में है। राह, सच्चाई और जीवन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद माँ। इस नए मिशन में मेरे साथ रहें। एक अगुस्टीनियन फ्रायर के तौर पर वे दशकों से माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय में आते रहे थे। वे पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में रोम में एक युवा छात्र के तौर पर वहां गए थे। बाद में वे फ्रायर जनरल के तौर पर और उसके बाद चिकलायो के धर्माध्यक्ष और कार्डिनल के तौर पर अक्सर आते रहे थे। उधर पेरू धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने संत पापा लियो 14वें की नवंबर में उस देश की यात्रा पर टिप्पणी की जहां उन्होंने एक मिशनरी के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि यह शांति और भाईचारे का समय होगा, लेकिन देश की भलाई के लिए मिलकर काम करने के बेहतर नजरिए का भी समय होगा। संत पापा लियो 14वें 11 से 17 नवंबर को लैटिन अमेरिका से होकर एक लंबी प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे, जिसमें उरुग्वे और अर्जेंटीना में भी रुकना शामिल है। पेरू धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने वाटिकन मीडिया के सामने ये बातें कहीं और इस बात पर जोर दिया कि यह प्रेरितिक यात्रा जो लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकाल्पा से होकर गुजरेगी, सभी पेरू वासियों के लिए शांति, मेलमिलाप और उम्मीद का पल होगा। 5 अगस्त को संत पापा लियो 14वें के पेरू दौरे की आधिकारिक पुष्टि से पूरे देश में हजारों भक्तों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, जहां रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट एक मिशनरी के तौर पर लगभग 20 साल बिताए थे। धर्माध्यक्ष कार्लोस कहते हैं कि यह देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच एकता, शांति और उम्मीद को मजबूत करने का एक मौका है। हमें उम्मीद है कि यह शांति, समझ और भाईचारे का समय होगा। उधर पिछली रात यूक्रेन के खार्किव इलाके में हुई बमबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए और कई घर तबाह हो गए हैं। सूमी में शहर में 5 बम गिराए जाने से कम 14 लोग घायल हो गए। इसी तरह ओडेसा में एक रूसी हमले में 14 लोग घायल हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। नीपर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि उसके एक गोदाम में 24 घंटे से भी कम समय में 2 बार हमला हुआ, जिससे लगभग $5 लाख का आपातकाल मेडिकल सामान तबाह हो गया।
कीव के कई इलाकों में रूस के कई हफ्तों से हो रहे जबरदस्त हमलों और बमबारी के बाद यूक्रेन में ये हालात बन रहे हैं। इस बीच यूक्रेन जवाब देने में कामयाब हो रहा है और रूसी इलाके के अंदर तक निशाने पर हमला करने की क्षमता विकसित कर रहा है। तातारस्तान के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी सीमा से लगभग 1,200 किलोमीटर पूर्व में एक बड़े तेल और पेट्रोकेमिकल हब पर ड्रोन हमले में कम से कम 13 मौतें हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मास्को और प्योंगयांग के बीच मिलिट्री सहयोग को और मजबूत करने की भी निंदा की। जेलेंस्की के अनुसार रूसी जमीन पर 30,000 से 50,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया गया है, जिसका मकसद आधुनिक लड़ाई की तकनीकों का अनुभव हासिल करना भी है। कीव ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेनी जमीन पर उत्तरी कोरिया में बनी मिसाइलों का पता लगाया है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हाल के दिनों में पश्चिमी रूस में एक उत्तरी कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती की रिपोर्ट दी है। उधर लाल सागर बंदरगाह शहर मोखा पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए और 30 घायल हुए। यह हूथी विद्रोहियों के हमले में मारे गए लोगों की संख्या है। यह हमला पश्चिमी यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर हुआ है। यमन की सरकारी सेना के मुताबिक मरने वालों में 4 सैनिक और 3 आम नागरिक थे, जबकि घायलों में 13 आम नागरिक थे। मिसाइलों और ड्रोन ने मिलिट्री स्थानों के साथ साथ संरचनाओं और रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। वायु सुरक्षा बल ने कथित तौर पर 11 बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

benedictus est Domine Deus universis.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने 9 अगस्त को वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिए गए अपने संदेश में कहा, हम जीवन के तूफान में भी यीशु के संग संयुक्त रहें।
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज का सुसमाचार गलीलिया समुद्र में एक आंधी के बीच पानी में चलकर यीशु का अपने शिष्यों के पास आने की चर्चा करता है। रोटियों और मछलियों के चमत्कार उपरांत स्वामी अपने शिष्यों को नाव पर चढ़कर निकलने को कहते हैं, जबकि वे स्वयं पर्वत के ऊपर एकांत में प्रार्थना करने को जाते हैं। तट से दूर एक बार निकलने के बाद शिष्यगण अपने को आंधी में फंसा पाते और आगे बढ़ने में संघर्ष करते हैं। एक सफल अनुभव के उपरांत जहां वे एक चमत्कारी निशानी के नायकों स्वरूप अपने को देखते, अब वे अपने में निसहाय आंधी और तूफान की जोखिम का सामना करने में भयभीत हो जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि रात अपने में खत्म होने को थी, यीशु उनकी ओर लहरों के उफान में पानी पर चलते हुए आते हैं और उन्हें देखकर शिष्य भयभीत हो जाते। वे उन्हें एक प्रेत समझते हैं, लेकिन वे उन्हें कहते हैं, ढाड़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। ईश्वर की उपस्थिति सारी चीजों को बदल देती है। यहाँ तक कि पेत्रुस लहरों में कुछ कदम चलकर उनकी ओर आते हैं, लेकिन लहरों को देखकर वे भयभीत हो जाते और पानी में डूबने लगते हैं, जबकि यीशु हाथ बढ़ाकर उन्हें बचा लेते हैं। इस भांति जब स्वामी नाव में चढ़ते तो आंधी थम जाती है और स्वतः ही विश्वास की एक घोषणा शिष्यों के हृदय से निकल पड़ती है,
2: Davvero tu sei figlio di Dio.
1: सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस बिंदु तक पहुंचने हेतु शिष्यों के लिए एक चमत्कार को देखना काफी नहीं था और ना ही लोगों की निगाहों में अपनी सफलता का एहसास करना, बल्कि उन्हें अपनी कमजोरी का अनुभव करना था और उसके अंदर ईश्वर की उपस्थिति को देखना। केवल यह अनुभूति ही उनकी आंखों और हृदयों को खोलती है जो उनके निकट रहते हैं, जहां वे तूफानों के मध्य भी शांति का अनुभव करते हैं। कुछ समय बाद यीशु उन्हें कहेंगे, यदि तुम में विश्वास होगा और तुम संदेह नहीं करोगे, यदि तुम इस पर्वत से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जाल लग, तो ऐसा ही होगा। शिष्यों के लिए समुद्र में वैसे ही बातों की अनुभूति होती है, ख्रिस्त की शांति की, जो पर्वत में प्रार्थना कर रहे होते, जो समुद्र की लहरों से होते हुए उनके बीच में उपस्थित होते हैं। संत पापा ने कहा कि यह चमत्कार हमारे लिए विशेष बातों की शिक्षा देती है। पहला, हम अपनी सफलता से ना बहकें और ना ही अहंकारी बने, वहीं हम अपने जीवन में निराश ना हों, यहाँ तक कि अंधेरे की स्थितियों में जब हम शक्तिहीन अनुभव करते हुए मुसीबतों का सामना करते हैं। हमारे प्रयासों के बावजूद हमें यह लगता है कि हम आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर जा रहे हैं।
2: In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona.
1: परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु हमारा परित्याग कभी नहीं करते हैं। और यदि हम नम्रता से अपने जीवन रूपी नाव में उनका स्वागत करते हैं, प्रार्थना संस्कारों और उनके वचनों को सुनने के माध्यम से, तो हम उनमें शांति, ज्योति और अपने जीवन यात्रा के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। माता मरियम, जो विश्वास के कारण धन्य मानी गई, हमें ईश्वर में विश्वास करते हुए एक समर्पित जीवन जीने हेतु मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सभी विश्वासी समुदाय के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया।
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex omnunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापालियो ने सूडान, विशेषकर एल ओबदेई शहर के विकट परिस्थिति के संबंध में अपनी चिंता जताई। उन्होंने देश के लोगों के प्रति अपने आध्यात्मिक सामीप्य प्रकट करते हुए इस बात की अपील की कि देश के नेतागण जन सामान्य लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निवेदन किया कि वे युद्ध की रोकथाम हेतु शीघ्र कदम उठाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे पीड़ित लोगों का सहारा बने, उन व्यक्तियों के हृदयों को परिवर्तित करें जो हिंसा के बीज बोते हैं, और देश में बहुप्रतीक्षित शांति स्थापित करने में मदद मिले। संत पापा ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मारे और घायल हो रहे बच्चों के मिलते खबरों पर दुख व्यक्त की। दुखदायी घटनाएं जारी हैं, वास्तव में उनमें वृद्धि हुई है, जिसमें बहुत से नागरिक मारे जा रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने युद्ध के शिकार घायलों और युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी निकटता के भाव प्रकट किए। इतने कष्ट को देखते हुए मैं मानवीय कानूनों का सम्मान करने और दोनों तरफ से आम लोगों पर हमला बंद करने की हृदय से अपील करता हूँ। युद्ध से सिर्फ युद्ध होती है और इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। उन्होंने कहा कि अब हिंसा के इस दौर को रोकने और शांति का रास्ता बनाने के लिए कूटनीति और वार्ता की जरूरत है। इसके उपरांत संत पापा ने रोम और विभिन्न देशों से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने मिलान धर्म प्रांत के युवाओं, एन्ना के स्काउट दल और पादुआ धर्म प्रांत के युवाओं का अभिवादन किया। संत पापा ने कई युवा दलों की उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराया, जो प्रशिक्षण और मिलन के कार्यक्रमों में अपनी छुट्टियों को फलप्रद व्यतीत किया है। उन्होंने कहा, यह आशा का संकेत है। संत पापा ने युवाओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इन दिनों धर्म विधि के कैलेंडर हमारे लिए बहुत सारे संतों की सूची प्रदान करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनके बारे में आप और अधिक गहराई से जान सकते हैं। उन्होंने कहा, कल हमने महान संत डोमिनिको की याद की, जो उपदेशक पुरोहितों के संस्थापक हैं। आज हम क्रूस के संत तेरेसा बेर्नाडेट एडिथ एटिने की याद करते हैं, जो ऑस्विट्स में मारे गए कार्मेलाइट और यूरोप के सह संरक्षक संत हैं। कल हम संत लॉरेंस रोम कलिसा के उपयाजक, परसों असीसी की संत क्लारा का त्यौहार मनाएंगे, जिन्होंने अपने साथी नागरिक संत फ्रांसिस के जीवन शैली का अनुसरण करते हुए गरीब और विनम्र यीशु के लिए अपने आरामदायक जीवन का परित्याग कर दिया। संत पापा ने कहा, प्रिय युवाओं, आप अपने को सुसमाचार के इन अनुकरणीय साक्षियों से प्रेरित होने दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए विदा लिए।
2: बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें 7 सितंबर को जेना जानो में माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय का दौरा करेंगे और गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। माता मरियम की छवि के सामने प्रार्थना करते हुए उनकी एक पेंटिंग का निरावरण भी किया जाएगा। रोम से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे छोटे से शहर जेना जानो रोमन साम्राज्य के दौरान यह गर्मियों के समय को बिताने का स्थान था और मध्य युग में एक गांव जो बाद में कोलोना परिवार की जागीर का हिस्सा बन गया। जेना जानो में यह महागिरजाघर माता मरियम नेक सलाहकारिणी का तीर्थालय है, जो असल में कुंवारी मरियम को समर्पित एक छोटा सा गिरजाघर था और 14वीं सदी में अगुस्टीनियन धर्म संघियों को सौंप दिया गया था। संत पापा परमाध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद 10 मई 2025 को माता मरियम का दर्शन करने गए थे। 1 साल से ज्यादा समय बाद वे 7 सितंबर को शाम 6 बजे धन्या कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा लियो ने परमाध्यक्ष के रूप में जेना जानो की अपनी पहली यात्रा के दौरान महागिरजाघर के बाहर एकत्रित सभी विश्वासियों से कहा था, मैं नए मिशन के इस पहले दिनों के दौरान यहाँ आना चाहता था, जिसे कलीसिया ने मुझे सौंपा है, ताकि पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मिशन को जारी रखा जा सके। तीर्थालय की अतिथि पुस्तिका में उन्होंने लिखा, उन्हें माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय पर आने का कर्तव्य और गहरी इच्छा महसूस हुई। संत पापा ने लिखा, मेरे पूरे जीवन में वे अपनी ममतामयी उपस्थिति, अपनी बुद्धिमता और अपने बेटे के प्रति अपने प्यार के उदाहरण के साथ मेरे साथ रही, जो हमेशा मेरे विश्वास के केंद्र में है, राह, सच्चाई और जीवन। आपकी मदद के लिए धन्यवाद माँ, इस नए मिशन में मेरे साथ रहें। एक अगुस्टीनियन फ्रायर के तौर पर वे दशकों से माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय में आते रहे थे। वे पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में रोम में एक युवा छात्र के तौर पर वहां गए थे। बाद में वे फ्रायर जनरल के तौर पर और उसके बाद चिकलायो के धर्माध्यक्ष और कार्डिनल के तौर पर अक्सर आते रहे थे। उधर पेरू धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने संत पापा लियो 14वें की नवंबर में उस देश की यात्रा पर टिप्पणी की, जहां उन्होंने एक मिशनरी के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि यह शांति और भाईचारे का समय होगा, लेकिन देश की भलाई के लिए मिलकर काम करने के बेहतर नजरिए का भी समय होगा। संत पापा लियो 14वें 11 से 17 नवंबर को लैटिन अमेरिका से होकर एक लंबी प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे, जिसमें उरुग्वे और अर्जेंटीना में भी रुकना शामिल है। पेरू धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने वाटिकन मीडिया के सामने ये बातें कहीं और इस बात पर जोर दिया कि यह प्रेरितिक यात्रा जो लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकाल्पा से होकर गुजरेगी, सभी पेरू वासियों के लिए शांति, मेलमिलाप और उम्मीद का पल होगा। 5 अगस्त को संत पापा लियो 14वें के पेरू दौरे की आधिकारिक पुष्टि से पूरे देश में हजारों भक्तों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, जहां रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट एक मिशनरी के तौर पर लगभग 20 साल बिताए थे। धर्माध्यक्ष कार्लोस कहते हैं कि यह देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच एकता, शांति और उम्मीद को मजबूत करने का एक मौका है। हमें उम्मीद है कि यह शांति, समझ और भाईचारे का समय होगा। उधर पिछली रात यूक्रेन के खार्किव इलाके में हुई बमबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए और कई घर तबाह हो गए हैं। सूमी में शहर में 5 बम गिराए जाने से कम 14 लोग घायल हो गए। इसी तरह ओडेसा में एक रूसी हमले में 14 लोग घायल हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। नीपर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि उसके एक गोदाम में 24 घंटे से भी कम समय में 2 बार हमला हुआ, जिससे लगभग $5 लाख का आपातकाल मेडिकल सामान तबाह हो गया।
कीव के कई इलाकों में रूस के कई हफ्तों से हो रहे जबरदस्त हमलों और बमबारी के बाद यूक्रेन में ये हालात बन रहे हैं। इस बीच यूक्रेन जवाब देने में कामयाब हो रहा है और रूसी इलाके के अंदर तक निशाने पर हमला करने की क्षमता विकसित कर रहा है। तातारस्तान के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी सीमा से लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व में एक बड़े तेल और पेट्रोकेमिकल हब पर ड्रोन हमले में कम से कम 13 मौतें हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मास्को और प्योंगयांग के बीच मिलिट्री सहयोग को और मजबूत करने की भी निंदा की। जेलेंस्की के अनुसार रूसी जमीन पर 30,000 से 50,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया गया है, जिसका मकसद आधुनिक लड़ाई की तकनीकों का अनुभव हासिल करना भी है। कीव ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेनी जमीन पर उत्तरी कोरिया में बनी मिसाइलों का पता लगाया है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हाल के दिनों में पश्चिमी रूस में एक उत्तरी कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती की रिपोर्ट दी है। उधर लाल सागर बंदरगाह शहर मोखा पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए और 30 घायल हुए। यह हूथी विद्रोहियों के हमले में मारे गए लोगों की संख्या है। यह हमला पश्चिमी यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर हुआ है। यमन की सरकारी सेना के मुताबिक मरने वालों में 4 सैनिक और 3 आम नागरिक थे, जबकि घायलों में 13 आम नागरिक थे। मिसाइलों और ड्रोन ने मिलिट्री स्थानों के साथ साथ संरचनाओं और रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। वायु सुरक्षा बल ने कथित तौर पर 11 बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम

0: समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
1: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। संत पापा लियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, कलिसिया निष्ठा पूर्वक सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की खोज करने वालों को अपनी यात्रा में मित्रों की तरह देखती और हर मानव के सम्मान की रक्षा और सृष्टि की देख रेख करने के संबंध में उन्हें मूल्यवान सहयोगी मानती है। द्वितीय वैटिकन महासभा की प्रेरिताई मापदंड का अनुपालन करना, जो हमें सुनने वर्तमान समय की निशानियों की आत्मपरख और उन्हें परिभाषित करने तथा ईश वचन से प्रज्वलित होकर कलिसिया को बिना भयभीत हुए मानवीय ज्ञान का सम्मान करने हेतु निमंत्रण देता है। वास्तव में ईश वचन हमें विश्वसनीय मानकों को प्रदान करता है, जो हमें न्याय और मेल मिलाप तथा लोगों के मध्य शांति स्थापित करने की मार्ग प्रशस्त करता है। जब इन मानकों को जटिल परिस्थितियों में लागू करने की बात आती है, दर्शन शास्त्र का योगदान और मानव तथा सामाजिक विज्ञान हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये संकाय हमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक आयामों को अधिक गहराई से समझने में मदद करते हैं। संत पापा योहन पॉलस द्वितीय इस बात की याद दिलाते हैं कि कलिसिया सामाजिक विज्ञानों की भूमिका का स्वागत करती है, जिससे उनमें से ठोस विचारों को निकाला जा सके, जो उन्हें कलिसियाई विभागों के संचालन में मदद करती हैं। इस तरह के ज्ञान से वार्ता करना सुसमाचार की शक्ति को कम नहीं करती है। इसके विपरीत, यह हमें इस बात को स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि वे कौन सी चीजें हैं जो व्यक्तिगत और समुदायों के जीवन को पोषित करती हैं। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि जब बहुत से विशिष्ट सवालों का सामना किया जाता है, कलिसिया एक विशेष विचार की सुनिश्चितता प्रदान नहीं करती है, लेकिन वह सुनने के वैज्ञानिक शोध और अलग अलग तरह के विचारों का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों के बीच गंभीर और ईमानदारीपूर्ण बहस को बढ़ावा देने के महत्व को जोर देती है। श्रोताओं, सुसमाचार और मानवीय ज्ञान के इस प्रभावकारी वार्ता से कलिसिया ने निरंतर अपनी सामाजिक शिक्षा का विकास किया है, जिसके फलस्वरूप इतिहास में एक समृद्ध विरासत को बढ़ावा मिली है, जो ख्रिस्तीयता के अनुरूप व्यक्ति के ईश शास्त्रीयकरण और मनोविज्ञान समझ पर आधारित है। यह विरासत विश्वास से उत्पन्न होती है और सच्चाई के स्वरूप को परिभाषित करती है। यह तकनीकी समाधानों का भंडार नहीं है या एक आर्थिक या राजनीतिक शैली नहीं है जिसे दूसरों के विरुद्ध थोपा जाता हो। यह एक दूसरे स्वरूप का भाग है, अर्थात उन सिद्धांतों का जो घटनाओं की व्याख्या हेतु मार्गदर्शन करते हैं और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और उनसे उत्पन्न विकल्पों की एक धर्म ग्रंथीय समझ को बनाए रखते हैं। यहाँ हम सामाजिक सिद्धांत के कार्य को मुख्य रूप में देखते हैं, जो राजनीति या संस्थानों के उत्तरदायित्व को पूरा करने का दावा नहीं करती है, बल्कि अपने को आत्मपरख के एक मूल आधार, उन बातों को पहचानने और प्रोत्साहित करने में मदद करती है जिनके द्वारा मानवीय सम्मान, समुदायों की महत्वपूर्णता और जन सामान्य की भलाई होती है। श्रोताओं, इस बात की समझ की सच्चाई एक उपहार है जिसे हमें साझा करने की जरूरत है, ना कि एक संपत्ति जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार, कलिसिया को शक्ति के आधार पर अपनी उपस्थिति की चाह रखने के प्रलोभन से मुक्त करती है। सच्चाई को एक नम्र रूप में घोषित करने हेतु धर्म ग्रंथ के संदर्भ की पुनः खोज करना, जो अपने को नहीं थोपती, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने ईमानदारी पूर्ण उस समय की परख हेतु निमंत्रण दिया जब सच्चाई की सेवा में असहिष्णुता और यहाँ तक कि हिंसा के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जाती थी। इस तर्ज पर संत पापा लियो कहते हैं कि मैंने इस पर जोर दिया है, कलिसिया यह दावा ना करे कि सत्य पर उसका एकमात्र अधिकार है, क्योंकि सच्चाई एक सीमा नहीं है जिसकी सुरक्षा की जाए, बल्कि एक अच्छाई है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने इसी तथ्य को अपने जोरदार शब्दों में घोषित किया, समय अपने में स्थान से बड़ा है। हमारे लिए अति जरूरी यह है कि हम किसी शक्तिशाली पद को हासिल या सांस्कृतिक गढ़ों की रक्षा ना करते हों, बल्कि हम एक अच्छी प्रक्रिया की शुरुआत करते और उसे सशक्त होने में मदद करते हों। इस भांति सुसमाचार की सच्चाई ऊपर से थोपी नहीं जाती है, लेकिन यह समय के साथ हमारे जीवन, समुदायों और संस्कृतियों के ताने बाने में ठोस रूप से विकसित होती है। यह एक सच्चाई नहीं जो विभिन्नताओं से भयभीत होती हो, बल्कि यह उनका स्वागत और दिशा निर्देशन करती है। यह संघर्षों को खत्म नहीं करती है, बल्कि उन्हें परिवर्तित करती है, उन्हें पुनः संगठित करती है, जिसे इतिहास अपने में बिखेरने का प्रयास करती है। इस संदर्भ का हवाला हम एक बहुआयामी बहुफलक से दे सकते हैं, जहां सुसमाचार की एक सच्चाई को विभिन्न आयामों से विचार किया जा सकता है। श्रोताओं, सत्य के लिए खुलेपन का यह मनोभाव, जो अपने में एक और विभिन्न अपने में दोनों है, कलिसिया की ख्रिस्तीयता को गहराई से व्यक्त करती है, क्योंकि यह पूरे मानव परिवार का आलिंगन करती है। उसके साथ ही यह अपने को लोगों के ठोस परिस्थिति और संस्कृतियों में डुबाए रखती है। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें याद दिलाती है, ख्रिस्तीयता के इस गुण में हर भाग अपने उपहारों को दूसरे भागों के संग और पूरी कलिसिया के संग साझा करती है। इस भांति कलिसिया एक पूर्ण और व्यक्तिगत समुदाय की ओर विकास करती है, जिसके लिए हम आपसी आदान प्रदान और पूर्ण एकता हेतु साझा प्रयास के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। इस भांति यह इस बात का अनुसरण करती है कि ईश प्रजा विभिन्न स्थानों से लोगों का जमा होना नहीं है, लेकिन यह विभिन्न कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल छठवें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलिसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसकी स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है। जब वह हर संदर्भ की खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने 60वें विश्व शांति दिवस के लिए संत पापा लियो 14वें के संदेश की थीम की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2027 को मनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति की सेवा करना, राजनीति एक रोकथाम की जिम्मेदारी के तौर पर। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निरस्त्र करने की जरूरत है, उस तर्क से आजाद करने की जो इसे बाहर करने या मौत का जरिया बनाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की तरह इसे सभी की सेवा और आम भलाई के लिए होना चाहिए। इस साल 25 मई को संत पापा लियो 14वें ने अपने पहले विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पेश करते हुए जो अपील की थी, जिसमें टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने और उन्हें आम भलाई की सेवा में लगाने की अपील की गई थी। वह 1 जनवरी 2027 को होने वाले 60वें विश्व शांति दिवस के समारोह के लिए संत पापा लियो 14वें द्वारा चुनी गई थीम में भी गूंजती है। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति लाना, राजनीति एक बचाव की जिम्मेदारी है। यह उनके संदेश की थीम है, जिसे आज 11 अगस्त को अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने जारी किया। अपने बयान में विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि इस चुनाव के साथ संत पापा राजनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बुलाए गए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं और पूरी इंसानियत से मानव गरिमा को बढ़ावा देने और शांति बनाने में योगदान देने की अपील करते हैं, जिसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने से होती है। और कल 10 अगस्त को पश्चिमी कोलंबिया में एक जोरदार भूकंप आया, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 570 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हुई और कई अभी भी लापता हैं। कई शहरों में बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें हैं, जबकि आपातकाल टीमें उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो गिरी हुई इमारतों के नीचे फंसे हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। इसका केंद्र देश के पश्चिम में सैन जोस डेल पालमार इलाके में 115 किलोमीटर की गहराई पर था। यह झटका कोलंबिया के एक बड़े हिस्से और देश की सीमाओं के बाहर भी महसूस किया गया। पश्चिमी कोलंबिया के मुख्य आबादी वाले इलाके में से एक परेरा में सबसे गंभीर हालात की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 10 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घरों को अलग अलग स्तर का नुकसान हुआ। अस्पताल, स्कूल, गिरजाघर भी प्रभावित हुए। शहर के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक मानिजेल्स महागिरजाघर भी प्रभावित हुआ है। कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने पीड़ितों और अभी भी लापता लोगों, घायलों और प्रभावित परिवारों के लिए अपनी एकजुटता और प्रार्थनाएं जताई और बचाव दल के कामों को ईश्वर को सौंप दिया। भूकंप की वजह से ट्रांसपोर्ट लिंक भी रुक गए हैं और पश्चिमी कोलंबिया के 6 हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा। कार्यवाही की सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी जाँच पूरी होने तक उड़ानें रोक दी जाएंगी। उधर पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र के युवा 10 से 14 अगस्त तक दक्षिणी इटली में कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए मिल रहे हैं, जो बातचीत और भाईचारे को बढ़ावा देने की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इटली के दक्षिणी पुलिया क्षेत्र भूमध्य सागर में शांति के लिए समर्पित 5 दिनों की मुलाकात प्रार्थना और चिंतन की मेजबानी कर रहा है। 10 से 14 अगस्त तक विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के युवा कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए भूमध्य सागर के तट पर सांता मरिया दी लेउका में एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है शांतिपूर्ण दुनिया के लिए शांति का भूमध्य सागर, सौंदर्य, कला और शांति। 2016 में स्थापित वार्षिक सभा का उद्देश्य शांति के लिए ठोस प्रतिबद्धता बनाने में मदद करने के लिए भूमध्य सागर के विभिन्न तटों से युवाओं को एक साथ लाना है।
इस वर्ष भाग लेने वालों में साइप्रस और यरूशलेम के युवा लोगों के साथ साथ कारितास और अन्य भागीदार संगठनों में शामिल इटालियन युवा भी शामिल हैं। यह सभा 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुली है। यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला 13 अगस्त को इस इलाके में आने वाले हैं। वे कार्डिनल पानिको हॉस्पिटल और टाइकेस की कासा दी बेतानिया हॉस्पिस का दौरा करेंगे, वहां पवित्र मिसा का अनुष्ठान करेंगे। बाद में वे प्रतिभागियों के साथ सांता मारिया देल फिनी विस्टेरा महागिरजा घर में रखे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 अगस्त को सुबह 7 बजे नई कार्ता दी लेउका की घोषणा की जाएगी और कार्डिनल पिज्जाबाला महागिरजा घर के बाहर प्रांगण में अंतिम मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उधर 2030 में येसु के बपतिस्मा की पारंपरिक तारीख के 2000 साल पूरे हो जाएंगे। सोमवार 10 अगस्त को जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन अगस्त ने येसु ख्रिस्त की बपतिस्मा की 2000 साल की सालगिरह के समारोह की तैयारी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। समिति जिसमें मंत्री, धार्मिक और सामुदायिक नेता और संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस स्मरणोत्सव की तैयारी और देखरेख के लिए राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री हसन ने जॉर्डन में कलीसिया के नेताओं के परिषद की पहल का समर्थन करने के लिए राजा अब्दुल्ला द्वितीय के निर्देशों के अनुसार तुरंत तैयारी शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, येसु ख्रिस्त के बपतिस्मा की 2000वीं सालगिरह मनाना जॉर्डन की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान और ख्रिस्तीय तीर्थ यात्रा के लिए एक वैश्विक गंतव्य के तौर पर उसकी भूमिका को दिखाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। संत पापा लियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, कलिसिया निष्ठा पूर्वक सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की खोज करने वालों को अपनी यात्रा में मित्रों की तरह देखती और हर मानव के सम्मान की रक्षा और सृष्टि की देखरेख करने के संबंध में उन्हें मूल्यवान सहयोगी मानती है। द्वितीय वैटिकन महासभा की प्रेरिताई मापदंड का अनुपालन करना, जो हमें सुनने वर्तमान समय के निशानियों की आत्मपरख और उन्हें परिभाषित करने तथा ईश वचन से प्रज्वलित होकर कलिसिया को बिना भयभीत हुए मानवीय ज्ञान का सम्मान करने हेतु निमंत्रण देता है। वास्तव में ईश वचन हमें विश्वसनीय मानकों को प्रदान करता है, जो हमें न्याय और मेल मिलाप तथा लोगों के मध्य शांति स्थापित करने की मार्ग प्रशस्त करता है। जब इन मानकों को जटिल परिस्थितियों में लागू करने की बात आती है, दर्शन शास्त्र का योगदान और मानव तथा सामाजिक विज्ञान हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये संकाय हमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक आयामों को अधिक गहराई से समझने में मदद करते हैं। संत पापा योहन पॉलस द्वितीय इस बात की याद दिलाते हैं कि कलिसिया सामाजिक विज्ञानों की भूमिका का स्वागत करती है, जिससे उनमें से ठोस विचारों को निकाला जा सके, जो उन्हें कलिसियाई विभागों के संचालन में मदद करती हैं। इस तरह के ज्ञान से वार्ता करना सुसमाचार की शक्ति को कम नहीं करती है। इसके विपरीत, यह हमें इस बात को स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि वे कौन सी चीजें हैं जो व्यक्तिगत और समुदायों के जीवन को पोषित करती हैं। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि जब बहुत से विशिष्ट सवालों का सामना किया जाता है, कलिसिया एक विशेष विचार की सुनिश्चितता प्रदान नहीं करती है, लेकिन वह सुनने के वैज्ञानिक शोध और अलग अलग तरह के विचारों का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों के बीच गंभीर और ईमानदारीपूर्ण बहस को बढ़ावा देने के महत्व को जोर देती है। श्रोताओं, सुसमाचार और मानवीय ज्ञान के इस प्रभावकारी वार्ता से कलिसिया ने निरंतर अपनी सामाजिक शिक्षा का विकास किया है, जिसके फलस्वरूप इतिहास में एक समृद्ध विरासत को बढ़ावा मिली है, जो ख्रिस्तीयता के अनुरूप व्यक्ति के ईश शास्त्रीयकरण और मनोविज्ञान समझ पर आधारित है। यह विरासत विश्वास से उत्पन्न होती है और सच्चाई के स्वरूप को परिभाषित करती है। यह तकनीकी समाधानों का भंडार नहीं है या एक आर्थिक या राजनीतिक शैली नहीं है जिसे दूसरों के विरुद्ध थोपा जाता हो। यह एक दूसरे स्वरूप का भाग है, अर्थात उन सिद्धांतों का जो घटनाओं की व्याख्या हेतु मार्गदर्शन करते हैं और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और उनसे उत्पन्न विकल्पों की एक धर्म ग्रंथीय समझ को बनाए रखते हैं। यहाँ हम सामाजिक सिद्धांत के कार्य को मुख्य रूप में देखते हैं, जो राजनीति या संस्थानों के उत्तरदायित्व को पूरा करने का दावा नहीं करती है, बल्कि अपने को आत्म परख के एक मूल आधार उन बातों को पहचानने और प्रोत्साहित करने में मदद करती है, जिनके द्वारा मानवीय सम्मान, समुदायों की महत्वपूर्णता और जन सामान्य की भलाई होती है। श्रोताओं, इस बात की समझ की सच्चाई एक उपहार है जिसे हमें साझा करने की जरूरत है, ना कि एक संपत्ति जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार, कलिसिया को शक्ति के आधार पर अपनी उपस्थिति की चाह रखने के प्रलोभन से मुक्त करती है। सच्चाई को एक नम्र रूप में घोषित करने हेतु धर्म ग्रंथ के संदर्भ की पुनः खोज करना, जो अपने को नहीं थोपती, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने ईमानदारी पूर्ण उस समय की परख हेतु निमंत्रण दिया जब सच्चाई की सेवा में असहिष्णुता और यहाँ तक कि हिंसा के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जाती थी। इस तर्ज पर संत पापा लियो कहते हैं कि मैंने इस पर जोर दिया है, कलिसिया यह दावा ना करे कि सत्य पर उसका एकमात्र अधिकार है, क्योंकि सच्चाई एक सीमा नहीं है जिसकी सुरक्षा की जाए, बल्कि एक अच्छाई है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने इसी तथ्य को अपने जोरदार शब्दों में घोषित किया, समय अपने में स्थान से बड़ा है। हमारे लिए अति जरूरी यह है कि हम किसी शक्तिशाली पद को हासिल या सांस्कृतिक गढ़ों की रक्षा ना करते हों, बल्कि हम एक अच्छी प्रक्रिया की शुरुआत करते और उसे सशक्त होने में मदद करते हों। इस भांति सुसमाचार की सच्चाई ऊपर से थोपी नहीं जाती है, लेकिन यह समय के साथ हमारे जीवन, समुदायों और संस्कृतियों के ताने बाने में ठोस रूप से विकसित होती है। यह एक सच्चाई नहीं जो विभिन्नताओं से भयभीत होती हो, बल्कि यह उनका स्वागत और दिशा निर्देशन करती है। यह संघर्षों को खत्म नहीं करती है, बल्कि उन्हें परिवर्तित करती है, उन्हें पुनः संगठित करती है, जिसे इतिहास अपने में बिखेरने का प्रयास करती है। इस संदर्भ का हवाला हम एक बहुआयामी बहुफलक से दे सकते हैं, जहां सुसमाचार की एक सच्चाई को विभिन्न आयामों से विचार किया जा सकता है। श्रोताओं, सत्य के लिए खुलेपन का यह मनोभाव, जो अपने में एक और विभिन्न अपने में दोनों है, कलिसिया की ख्रिस्तीयता को गहराई से व्यक्त करती है, क्योंकि यह पूरे मानव परिवार का आलिंगन करती है। उसके साथ ही यह अपने को लोगों के ठोस परिस्थिति और संस्कृतियों में डुबाई रखती है। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें याद दिलाती है, ख्रिस्तीयता के इस गुण में हर भाग अपने उपहारों को दूसरे भागों के संग और पूरी कलिसिया के संग साझा करती है। इस भांति कलिसिया एक पूर्ण और व्यक्तिगत समुदाय की ओर विकास करती है, जिसके लिए हम आपसी आदान प्रदान और पूर्ण एकता हेतु साझा प्रयास के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। इस भांति यह इस बात का अनुसरण करती है कि ईश प्रजा विभिन्न स्थानों से लोगों का जमा होना नहीं है, लेकिन यह विभिन्न कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल छठवें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलिसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसकी स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है जब वह हर संदर्भ की खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने 60वें विश्व शांति दिवस के लिए संत पापा लियो 14वें के संदेश की थीम की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2027 को मनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति की सेवा करना, राजनीति एक रोकथाम की जिम्मेदारी के तौर पर। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निरस्त्र करने की जरूरत है, उस तर्क से आजाद करने की जो इसे बाहर करने या मौत का जरिया बनाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की तरह इसे सभी की सेवा और आम भलाई के लिए होना चाहिए। इस साल 25 मई को संत पापा लियो 14वें ने अपने पहले विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पेश करते हुए जो अपील की थी, जिसमें टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने और उन्हें आम भलाई की सेवा में लगाने की अपील की गई थी। वह 1 जनवरी 2027 को होने वाले 60वें विश्व शांति दिवस के समारोह के लिए संत पापा लियो 14वें द्वारा चुनी गई थीम में भी गूंजती है। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति लाना, राजनीति एक बचाव की जिम्मेदारी है, यह उनके संदेश की थीम है, जिसे आज 11 अगस्त को अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने जारी किया। अपने बयान में विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि इस चुनाव के साथ संत पापा राजनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बुलाए गए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं और पूरी इंसानियत से मानव गरिमा को बढ़ावा देने और शांति बनाने में योगदान देने की अपील करते हैं, जिसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने से होती है। और कल 10 अगस्त को पश्चिमी कोलंबिया में एक जोरदार भूकंप आया, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 570 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हुई और कई अभी भी लापता हैं। कई शहरों में बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें हैं, जबकि आपातकाल टीमें उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो गिरी हुई इमारतों के नीचे फंसे हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। इसका केंद्र देश के पश्चिम में सैन जोस डेल पालमार इलाके में 115 किलोमीटर की गहराई पर था। यह झटका कोलंबिया के एक बड़े हिस्से और देश की सीमाओं के बाहर भी महसूस किया गया। पश्चिमी कोलंबिया के मुख्य आबादी वाले इलाके में से एक परेरा में सबसे गंभीर हालात की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 10 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घरों को अलग अलग स्तर का नुकसान हुआ। अस्पताल, स्कूल, गिरजाघर भी प्रभावित हुए। शहर के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक मानिजेल्स महागिरजाघर भी प्रभावित हुआ है। कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने पीड़ितों और अभी भी लापता लोगों, घायलों और प्रभावित परिवारों के लिए अपनी एकजुटता और प्रार्थनाएं जताई और बचाव दल के कामों को ईश्वर को सौंप दिया। भूकंप की वजह से ट्रांसपोर्ट लिंक भी रुक गए हैं और पश्चिमी कोलंबिया के 6 हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा। कार्यवाही की सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी जाँच पूरी होने तक उड़ानें रोक दी जाएंगी। उधर पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र के युवा 10 से 14 अगस्त तक दक्षिणी इटली में कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए मिल रहे हैं, जो बातचीत और भाईचारे को बढ़ावा देने की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इटली के दक्षिणी पुलिया क्षेत्र भूमध्य सागर में शांति के लिए समर्पित 5 दिनों की मुलाकात प्रार्थना और चिंतन की मेजबानी कर रहा है। 10 से 14 अगस्त तक विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के युवा कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए भूमध्य सागर के तट पर सांता मरिया दी लेउका में एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है शांतिपूर्ण दुनिया के लिए शांति का भूमध्य सागर, सौंदर्य, कला और शांति। 2016 में स्थापित वार्षिक सभा का उद्देश्य शांति के लिए ठोस प्रतिबद्धता बनाने में मदद करने के लिए भूमध्य सागर के विभिन्न तटों से युवाओं को एक साथ लाना है।
इस वर्ष भाग लेने वालों में साइप्रस और यरूशलेम के युवा लोगों के साथ साथ कारितास और अन्य भागीदार संगठनों में शामिल इटालियन युवा भी शामिल हैं। यह सभा 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुली है। यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला 13 अगस्त को इस इलाके में आने वाले हैं। वे कार्डिनल पानिको हॉस्पिटल और टाइकेस की कासा दी बेतानिया हॉस्पिस का दौरा करेंगे, वहां पवित्र मिसा का अनुष्ठान करेंगे। बाद में वे प्रतिभागियों के साथ सांता मारिया देल्फिनी विस्तेरा महागिरजाघर में रखे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 अगस्त को सुबह 7 बजे नई कार्ता दी लेउका की घोषणा की जाएगी और कार्डिनल पिज्जाबाला महागिरजाघर के बाहर प्रांगण में अंतिम मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उधर 2030 में येसु के बपतिस्मा की पारंपरिक तारीख के 2000 साल पूरे हो जाएंगे। सोमवार 10 अगस्त को जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन अगस्त ने येसु ख्रिस्त की बपतिस्मा की 2000 साल की सालगिरह के समारोह की तैयारी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। समिति जिसमें मंत्री, धार्मिक और सामुदायिक नेता और संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस स्मरणोत्सव की तैयारी और देखरेख के लिए राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री हसन ने जॉर्डन में कलीसिया के नेताओं के परिषद की पहल का समर्थन करने के लिए राजा अब्दुल्ला द्वितीय के निर्देशों के अनुसार तुरंत तैयारी शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, येसु ख्रिस्त के बपतिस्मा की 2000वीं सालगिरह मनाना जॉर्डन की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान और ख्रिस्तीय तीर्थ यात्रा के लिए एक वैश्विक गंतव्य के तौर पर उसकी भूमिका को दिखाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।